मन क्रम बचन विचार चौपाई। मैं ना गणेश प्रथम मनाऊं, किसन बिसन कब हूं नह त्याऊं।

हार हमारो महालो मैं किंकर थारो अपना जान करो रखवार बहेंगे की लाज विचार अपना जान मुझे प्रत परिया चुन चुन सत्र हमारे मरिया देग तेग जग मैं दो चले राख आप मुहे और ना दले तुम मम करो सदा प्रत पारा तुम साहेब मैं किंकर थारा तुम साहेब मैं दास तिहारा तुम मम करो सदा प्रत पारा तुम साहेब मैं दास तिहारा जान अपना मुझे निवाज आप करो हमरे सब काज तुम हो सब राजन के राजा आपे आप गरीब निवाजा दास जान कर कृपा करो मोहे हार परा मयान द्वार तोहे अपना जान करो प्रत पारा तुम साय मैं किंकर थारा दास जान दयात उबारो हमरे सब बैरियन संगारो प्रथम तरो भगवत को ध्याना बहुर करो कबताबद नाना

कालपुरख की देह मो कोटक विष्ण महेश कोट इंद्र ब्रह्मा किते राव सस क्रूर जलेश दोहरा राम कथा जुग जुग अटल सब कोई पाखत नेत स्वर्ग बास रघुबर कर सगरी पुरी समेत चौपाई जो ये कथा सुने अरे गावे दुख पाप ते निकट न आवे विष्णु भगत की ये फल होई आद ब्याद शब सके न कोई संबत सत्रह सहस पंचावन हाड़ बदी प्रथम सुख दावन तब प्रसाद कर

रघुबर कथा प्रसंग। साध साध जानो नहीं बाद सवाद विवाद, ग्रंथ सकल पूर्ण कियो भगवत कृपा प्रसाद। सवैया

इतनी सेवा प्रवान कर दी, कीर्तन कर दिया, सतगुरां दी महिमा गाउंदिया होया, कई तरह दिया भुलां वी गुरदेव जी ते संगत बख्शन योग है जी, रहमत करन सतगुरु जी पढ़ी हुई बाणी कीती हुई मालक दी सेव सला आई हुई सात संगत दे हिरदयां दे विच वसाउणा करन, गुरसिखी जीवन बख्श करन दरों करो नाम दी दात, सिक्की सतगुरु साहब बख्श करन जी आहुम ज्ञानी साहब नूं, भाई साहब भाई ज्ञानी जी दर्शन सिंह जी उन्हां दे पासों सतगुरां दे पावन इतिहास दी विचार सरवण करिए जी, फतेह बुलाओ जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

0: सतनाम श्री वाहिगुरु जी, सतनाम वाहिगुरु जी। गुर बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ न आवै। गुर बिन सुरत न सिद्ध, गुरु बिन मुक्त न पावै। गुर कर सच विचार, गुरु कर रे मन मेरे। गुर कर शब्द सुपुन, अग्न कटे सब तेरे। गुर नैन बैन गुर गुर करो, गुरु सत कब लाल कह। गुरु न देखियो न पियो, ते ते संसार में।
1: वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
0: सकल गुर सेवी है, अहं सहज

प्रभे अपि तोल तुलाया अपे शाह अपे बन जारा अपे बन जकराया अपे धरती साजियन प्यारे पिछे टंक चढ़ाया मेरे मन हर हर त्याए सुख पाया हर हर नाम निधान है प्यारा गुरपूरै मीठा लाया रहा।

तो कथियों कथ कहानी ए मन चंचला चतुराई किर न पाया चतुराई न पाया किराए तो सुन मन मेरे आए ये पाया मोहन जिने मन भुलाया माया ता मोहनी तना कीती जिन ठगावड़ी पाई कुर्बान कीता तो सब टोजन मह मीठा लाया।

तो टिटका ते जप वाले धन मले चाखाए अंतर पूजा पड़कते बसन दुर्गा भा

0: मन उठा।
1: श्लोक में ल पहला नानक फिके बोले अंतन फिका होए, फिको फिका सदिया फिके फिकी सोए, फिका दरगह सटिया मुतु का।